0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना, जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं, और मन वो तो जहाँ होता है वहाँ टिकता ही कहाँ है, या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बुन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म, अब सुनते हैं हमारी पहली कॉलर को और जानते हैं कहां से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी हैं मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया,
1: मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती है हमारी पहली सखी जिनका कॉल लगा है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा
1: जी, मुझे गाना सुनना है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में भी तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसी घर पर रहती हूँ, शेर व शायरी की शौक है, लिखती हूँ।
0: लिखती हैं आप? शेर व शायरी, एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी?
1: अच्छा,
0: शायरी की
1: सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, तुम रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा।
0: उफ,
1: कुछ तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओ, क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया।
1: मैं ना खूबसूरत नहीं हूँ, आज खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है।
0: नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं, आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से।
0: अच्छा, तो बताइए। हाँ। आज गणपति का उत्सव चल रहा है, तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: हाँ, लेकर आए ना गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना? खूब अच्छा। हाँ, सब हाँ। क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: आज हमने उकड़ी से मोदक का भोग लगाया।
0: अरे वाह। और बताइए। हाँ। आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में आप? और हाँ। गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपकी घर में लेकर आए, इसी प्रार्थना हाँ, करते हैं। और हाँ। बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: देवा और देवा, गणपति देवा।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत प्यारा सा गीत है ये तो। बहुत हाँ। अच्छा सा ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं।

0: ಹಲೋ ಸಹೇಲಿ.
1: ಹಲೋ ಸಹೇಲಿ ಜೀ, ನಮಸ್ತೆ.
0: ನಮಸ್ತೆ. तो बताइए आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम.
1: जी, मेरा नाम कल्पना मनोर है और मैं भूलीगांव से बोल रही हूँ.
0: अच्छा,
1: वाशिम से.
0: वाशिम से तो हाँ. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. आप बताइए, आप क्या करती हैं कल्पना?
1: जी, मैं आंगनवाड़ी मदरटीस हूँ.
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात. अच्छा, ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में, वो कौन सा है?
1: ये वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, वो सब मैं रेडियो पे सुनती हूँ.
0: अच्छा, ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती है ना?
1: हाँ.
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको?
1: ये मुझे बच्चों को पढ़ाना और ड्राइंग करना.
0: अच्छा, आप आंगनवाड़ी में काम करती, तो आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है?
1: हाँ, मेरा बच्चा भी है ना, 6 साल का, मेरे साथ ही पढ़ता है.
0: अच्छा, तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है. आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं. और हाँ. आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए?
1: तारों का चमकता चेहरा हो.
0: तो ये
1: हंसने की वादी हो.
0: अच्छा, तो ठीक है, हम सुनवाते हैं आपकी.

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही
1: हैं? जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब ही करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ।
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के सुनते करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए आप जो करती हैं आपका ये जो बुटीक चलाती हैं तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं? सलवार
1: जी मैं लेडीज। हाँ मैम जी मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में हैं, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के है ना, और सलवार सूट तो चल ही रहे हैं, प्लाजो वगैरह काफी चल रहे हैं ना।
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर की सबसे ज्यादा कौन सा?
1: मैम इस समय तो सब लोग पैंटी सूट पहन रहे ज्यादा और साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
0: हाँ आजकल ये भी ट्रेंड में ना कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियाँ हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप
1: हाँ बहुत अच्छी सी ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी से लेडी से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही है।
0: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
0: अरे वाह बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम परजना सखी से बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी, आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ही है, दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है।
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, आप आराम हाँ। से है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकते हैं ना।
1: हाँ, अब बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6th महीना चालू है।
0: अरे वाह, यानी कि बेटे हाँ। की भी शादी हो गई, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई है, अब है ना।
1: हाँ, बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से।
0: आप सास के रोल में आ गई है।
1: चंदन का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेरी बेटी सायरा और सबाना।
0: बहुत अच्छा।
1: और बहू है तो नीलोफर और बेटा है तो सब्बीर।
0: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, मुझे भी सुनना है।
1: क्योंकि मेरी बेटी है ना बिजली वाली, उनको बहुत पसंद है।
0: अच्छा, अरे
1: वो मोबाइल में रखेगी ना, वही गाना रहेगी, उनके पापा के लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे हैं, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली हेलो सहेली भी पसंद है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे विविध भारती, जैसे हमें सबकी आवाजें पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए। नमस्ते। तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी मेरा नाम प्रमिला खन्ना है।
0: अच्छा प्रमिला खन्ना जी।
1: जी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है।
0: अच्छा बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: जी लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का है।
0: अच्छा यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना।
1: जी
0: सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
1: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, तब मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सोनू निगम फिल्म का गाना सुनना है।
0: अच्छा बिल्कुल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: अरे मैम नमस्कार, मैं संभाजी नगर से बात करनी निर्मला कर रहे
0: हैं। अच्छा अच्छा, आप छत्रपति संभाजी नगर से बोल रही हैं निर्मला जी।
1: गाने बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे।
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: तो जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं सब पसंद है ना आपको? तो आप बताइए, आप कौन सा गीत

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चेल्लारे बोल रही हूँ।
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: और यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
1: हाँ।
0: तो बताइए, आप पढ़ती हैं?
1: हाँ।
0: तो

0: कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: सिक्स्थ में अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती
0: हूँ। मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती हैं, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है।
0: सखी सहेली अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ।
0: अच्छा, यानी कि साची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना?
1: हाँ।
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ।
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है? गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी?
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ साची के लिए खास तौर पर ये गीत। अच्छा लगेगा साची को?

0: वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है।
0: अच्छा अफरोजा जी, आप बोल रही हैं कश्मीर से। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी जगह से आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं अफरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ। दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ।
0: अच्छा तो बच्चे छोटे हैं?
1: और साथ साथ विविध भारती चलता रहता है। कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से।
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करती होंगे, शैतानी करते रहती होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है, अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
0: बिल्कुल अच्छे से उनको पढ़ाना लिखाना, घर संभालना। सच में और बहुत बड़ा काम है ये। मतलब आप जॉब करने जाते हैं, लोगों को लगता है वही चीज,
1: ये काम नजर भी नहीं आता, ये काम नजर भी नहीं आता है,
0: जबकि सबसे जरूरी काम है।
1: हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं, उनका काम बिक जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं, फिर पता चलता ही नहीं ऑफिस है, घर में जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
0: ऊपर से कहा जाता है आप करते ही क्या है घर पे, जबकि अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही बच्चों को भी संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम। हाँ। आप विविध भारती आप सुनती हैं तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
1: बहुत ज्यादा। कई सालों से वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके में सुना करती थी।
0: अच्छा।
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे, सखी सहेली है, हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं।
0: अरे
1: जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई ना, हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
0: ये तो
1: अभी भी सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर।
0: हाँ नहीं, बच्चे छोटे हैं, आपने बताया 5 साल के 2 साल के, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना।
1: बहुत ज्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है, इतने सालों से, मेरे ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम में।
0: बात करें,
1: एक बार विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, यानी कि आपकी चलो बात तो हुई, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने लगाया है। नहीं सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी गाने के बोल है इस मोड़ से जाते हैं।
0: है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर गीत है ना, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें, हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
1: आप आइए ना कश्मीर,
0: बिल्कुल बिल्कुल कभी
1: आप आइए और सिर्फ देख रहे कितनी सुंदर जगह है, हर मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा ये गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002 4662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002 4662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867 0288 और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 2867 0288 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गट लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे